0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

से शुक्र करूं तेरी रहमतों का, ऐ खुदा मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Varun Vijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
6: सुनो शारदा।
7: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसीलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं अच्छी अच्छी बातें आपके साथ साझा करने के लिए। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते यहां से ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, पढ़ने पढ़ाने की बातें होती हैं, जिंदगी को जीने की बातें होती हैं। जब पढ़ने पढ़ाने की बात मैंने यहां जिक्र कर दी है, तो आज कुछ ऐसी ही बातें होंगी कि अगर आप अपने आप को लेकर आगे जाना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो, विदेश की बात हो, तो किस किस दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ता है, इन दुश्वारियों से या यूं कहें कि इन चैलेंजेस से कैसे हम अपने आप को बचाकर रख सकते हैं। जाहिर सी बात है, इन सारी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक काउंसलर की जरूरत होती है। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हर एक सवाल का जवाब आपको बखूबी मिलेगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीजा इन्फो के आप संस्थापक हैं, सीईओ हैं, मिस्टर अमित बैजल जी, जो कि 2007 में इन्होंने इसकी स्थापना की और ये एक बुटीक माइग्रेशन लॉ एंड हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी है और जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस है, साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप, केन्या में, और मतलब इस तरीके से धीरे धीरे आप पैर पसार रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। एजुकेशन के बारे में सर की अगर बात मैं आपके सामने रखूं तो सर ने जो एजुकेशन रही है वो डीपीएस आर के पुरम नई दिल्ली से रही है और आप आईएचएम में ग्रेजुएट है, यानी कि पूसा इंस्टीट्यूट जिसका नाम आता है, और आईएचएम का जब जिक्र आता है तो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई का जिक्र आता है। साथ ही साथ आपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम माइग्रेशन लॉ एंड प्रैक्टिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से, कैनबरा एंड एन एमबीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से आपने वहां से पढ़ाई की है, तो बहुत सारा अनुभव है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सर से ही खुद इसके बारे में जानना चाहूंगा। तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत है।
8: धन्यवाद धन्यवाद।
7: मैं तो थक जाऊंगा सर, बहुत अच्छा आपका अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी बातें आपके बारे में पढ़ रहा था, तो बस मैं तो यही कहूंगा कि मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करके और बहुत सारी बातें हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना
8: जरूर।
7: जहन में पहले सवाल ये आता है कि आप कैसे हैं?
8: बहुत बढ़िया, दिल्ली इज वेरी नाइस, ये हमारी होम सिटी है। 25 साल हुए दिल्ली छोड़े हुए, लेकिन अभी भी घर ही लगता है।
7: घर ही लगता है, बहुत सही कहा आपने, घर ही लगता है, रियली नाइस। सबसे पहले जहन में सवाल ये भी आता है कि ये जो कंपनी है आपकी जिसके आप संस्थापक हैं, वीजा इन्फो
8: जी,
7: मैं जानना चाहता हूँ, मेरे लिसनर्स जानना चाहते हैं कि वीजा इन्फो है क्या।
8: देखिए, जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह गया था। मैं 1999 की बात बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं वहाँ पहली बार गया तो मुझे ये एहसास हुआ कि एक तो मुझे आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया है क्या. इनफैक्ट मुझे ये नहीं पता था कि एजुकेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है हर कंट्री में, अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, अलग अलग तरीके से पढ़ी जाती है. तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ हिंदुस्तान का अनुभव था तो मेरे लिए काफी दिक्कत आई मुझे ये समझने में कि ऑस्ट्रेलिया में टोटली सिस्टम जो है जमीन आसमान का डिफरेंस है. तो ना तो हमें, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, हमें किसी ने गाइड किया था कि वहां जाके क्या होगा, ना जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सब्सटैंशियल या फैक्ट बेस्ड थी. सबने अपनी अपनी ओपिनियंस जरूर साझा किए थे, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो तो उन्होंने अपने तजुर्बे से हमें बताया था, हमारे दोस्तों ने अपना तजुर्बा शेयर किया था, लेकिन एक साइंटिफिक वे, एक सही समझदार तरीका, जो जैसे अब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं आप पढ़ने के लिए, स्कूल जाते हैं आप अपनी जिंदगी में आगे पढ़ने के लिए, तो स्कूल में आपकी 12 साल आप लगाते हैं, लेकिन जब हम बाहर गए अपनी पूरी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, तो हमारे को किसी ने 6 महीने की भी ट्रेनिंग नहीं दी थी कि बाहर जाके करना क्या है. तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज और रिसर्च की बहुत बड़ी कमी है स्टूडेंट्स के अंदर. जब वो बाहर जाते हैं तो वो यूजुअली लोगों से ओपिनियन लेते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं, एजुकेशन एजेंट्स के पास पहुंच जाते हैं, और अपना पूरा फ्यूचर का करियर उनके हाथ में रख के बोलते हैं आपको जो करना है कीजिए. तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसको कि जब आप सोचते हैं कि हमें बाहर जाना है तो आपको एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट अप्रोच लेनी चाहिए बाहर के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, और वो बहुत जरूरी है.
9: जी मैं समझता हूं कि सर उसके बाद आपका रोल शुरू होता है, आपकी भूमिका शुरू होती है, जब आपने कहा कि एक स्टूडेंट्स को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वो अनभिज्ञ होता है, तो जो आपकी भूमिका है, क्योंकि आप एक यूं कहें कि सर्टिफाइड एजेंट हैं, अच्छे काउंसलर हैं, और जब आप लोगों से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में आप जाते हैं, तो वो क्या चैलेंजेस होते हैं, वो क्या आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपसे समझना चाहते हैं, और उस वक्त आप उनको किस तरीके से गाइड करते हैं, या यूं कहें कि इसके साथ साथ सवाल मेरा ये भी जुड़ा हुआ है कि ये जो जर्नी शुरू होती है आफ्टर 12th के बाद शुरू होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाना चाहता है, स्टूडेंट्स को जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, तो वो आपका जो भूमिका है, जो रोल है, वो क्या रहता है?
8: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जर्नी 12th के बाद शुरू होती है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा. आज अगर आप अपने बच्चे को IIT में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो यूजुअली आप उसकी तैयारी 6ठी 7वीं से शुरू कर देते हैं. आप 12वीं की वेट नहीं करते हैं कि 12वीं खत्म होगी उसके बाद हमारा बेटा IIT की इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए शुरुआत करेगा. तो आपके लिए जो जो चीज जरूरी है जिंदगी में, आप उसकी तैयारी बहुत अरसे पहले से शुरू कर देते हैं, चाहे वो IIT हो, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो IIM में एडमिशन हो, चाहे कोई भी किस्म का एंट्रेंस टेस्ट हो. लेकिन जब बाहर जाने की बात आती है, तो यूजुअली देखा यह जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि पहले आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, 12वीं खत्म कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस या वहां जाने का प्रोसेस शुरू करेंगे. तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं पर आती है, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता रिसर्च करने का, समझने का, सोचने का, और आपको डिसीजन लेना होता है इंस्टेंटली. तो उसमें फिर वो अरेंज मैरिज वाला सीन हो जाता है कि आपको लड़की दिखाई गई है, आपको 15 सेकंड में हाँ या ना बोलना है, और उसके बाद उसके साथ पूरी जिंदगी निभाना.
9: ऐसा अक्सर होता भी है कि मतलब कभी कभी फैसले गलत भी हो जाते हैं, आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फैसले हमारे बड़े बुजुर्ग ले लिया करते थे, तो जिंदगी भर जब एक दूसरे के साथ रहते हैं हस्बैंड वाइफ, वो फैसले सही भी होते हैं.
8: बिल्कुल.
9: तो खैर, आपकी बात का भावार्थ मैं समझ पा रहा हूँ, हमारे लिसनर्स भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर ने वाकई बहुत अच्छी बात कही है, कि ऐसा अक्सर हिंदुस्तान में भी होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं नहीं होता. दोनों बात सर ने यहाँ रखी है कि अगर आप वो एक प्लेटफॉर्म, अगर वो आप एक बेस बना के शुरू से ही चलेंगे, तो 12th के बाद आपको दिक्कत परेशानी ज्यादा सामने नहीं आएगी. तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, और जो अमित सर आपसे अपनी एक जर्नी शेयर कर रहे हैं, इस बात को निश्चित तौर पर जब आप ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे, तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और हमारे जो गेस्ट हैं हम उनसे ही जानना चाहेंगे. म्यूजिक से आपका वास्ता तो रहता ही होगा सर, कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आप सुनना चाहते हो, हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहते हो?
8: मुझे मोहम्मद रफी के सारे गीत बड़े अच्छे लगते हैं, तो मोहम्मद रफी का कोई भी गाना बहुत ही अच्छा होता है, और सुबह का टाइम है.
9: ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ अमित सर के लिए. तो ये गाना आपके लिए भी है लिसनर्स, इस गाने को आप जरूर सुनिए, कहीं जाएगा मत. स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 FM. मैं हूं गगन, और आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है अमित बैजल साहब, जो कि वीजा इन्फो के संस्थापक हैं, और बहुत सारी बातें हो रही हैं वीजा इन्फो के बारे में, करियर के बारे में. कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, आप हैं अमित बैजल जी, जो कि वीजा इन्फो के आप संस्थापक हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ब्रेक पर जाने से पहले आपने सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, जो मुझे भी समझ में आई कि 12th के बाद हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये प्लानिंग अगर पहले से होगी तो निश्चित तौर पर ज्यादा दिक्कत परेशानी लोगों के सामने नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि लोग आपकी जो ड्यूटी शुरू होती है आपसे जब मिलते हैं, विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, आगे

0: पढ़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एजेंट, अच्छा काउंसलर अगर मिल जाए तो उनकी मेहनत वसूल हो जाती है, अदरवाइज इस पेशे से भी विश्वास उठ जाता है। अक्सर हमने देखा है कि कबूतरबाजी, जिसे एक आम भाषा में कहा जाता है कि लोग पैसे ऐठ लेते हैं, वहां हम आपको भेजेंगे, वहां धरातल पर चीजें अलग कुछ होती हैं, तो ये प्रोसेस मैं समझना चाहता हूँ।
1: देखिए, सबसे पहले आपको इसकी तैयारी तरीके से करनी पड़ेगी, और सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए, आपका गोल क्या है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य और डिजायर कि मुझे क्या ख्वाहिशें हैं, वो दो अलग अलग चीजें होती हैं। आपकी ख्वाहिश हो सकती है बहुत आपके पास पैसा हो, ये एक ख्वाहिश है, ये गोल नहीं है। गोल आपका होना चाहिए बड़ा क्लियर, संक्षिप्त, कि आप करना क्या चाहते हैं आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद
0: जी।
1: अब लोग कहते हैं कि हम कैसे बताएं कि आज 5 साल के बाद क्या होगा या क्या करना चाहते हैं। भले ही लोगों को ये ना पता हो कि हमें 5 साल के बाद क्या करना है, लेकिन उनको एक चीज हमेशा हर एक आदमी को पता होती है कि हमारे को 4 से 5 साल के बाद जिंदगी जीने के लिए जो लाइफस्टाइल हम चाहते हैं उसके लिए हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये सवाल किसी से पूछे, भले ही वो इससे नजर चुराए, आंसर ना करना चाहे, लेकिन एक ना एक दिन जिंदगी में सबको आंसर करना पड़ता है कि उनको एक्चुअली में जिंदगी जीने के लिए जैसा वो लाइफस्टाइल चाहते हैं उसके लिए कितनी आमदनी की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज तो मैं अपने श्रोताओं से ये कहूंगा कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको अपनी जिंदगी जैसा आप जीना चाहते हैं, उस जिंदगी जीने के लिए अगर आपकी ख्वाहिश और रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए महीने की सैलरी की है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मेरी 2 लाख रुपए सैलरी का मेरा उद्देश्य है आज से 3 या 4 साल बाद, और आपको ये समझना जरूरी है कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं क्या वो आपको उस उद्देश्य के पास लेके जा रहा है या उससे दूर लेके जा रहा है। तो ये अगर इस तरीके से आदमी सोचना शुरू करे तो उसको आउटकम्स बहुत अच्छे मिलेंगे, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिलेंगे। लोग अक्सर ये वाली बात करते हैं कि हमने ऐसा सोचा था बट ऐसा हुआ नहीं,
0: नहीं हुआ।
1: ये 99% लोग अपनी जब नाकामी होती है तो
0: छुपाने की कोशिश करते हैं,
1: छुपाने की भी कोशिश नहीं करते, मैं ये नहीं कहूंगा कि छुपाने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनको प्रिपेयर नहीं थे। अब प्रिपेयर नहीं थे तो अब नाकामी का कोई कारण तो होता है
0: जी, जी।
1: तो हर आदमी हर इंसान एक कारण ढूंढता है। तो अगर तो आपने ये देख लिया कि आपको कितनी आमदनी चाहिए, तो उसके बाद आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप उस आमदनी को हासिल करने के लिए क्या एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं। अगर एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं तो एजुकेशन को एक्सपेंस मत समझिए, एजुकेशन इज नॉट एन एक्सपेंस, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है। जब आप अपना घर खरीदते हैं, आपके माँ बाप ने घर खरीदा होगा तो उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी लोगों से बात करी होगी ये देखने के लिए कि उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, क्या दाम बढ़ेंगे आगे जाके। तो जो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो घर खरीदने की हो, चाहे वो सोने जवाहरात की हो, हर इन्वेस्टमेंट पे इंसान रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है। तो एजुकेशन भी एक इन्वेस्टमेंट है
0: जी।
1: और एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी वो आपकी लाइफस्टाइल को फंड कर सकती है या नहीं, इसका जवाब आपको देना है सबसे पहले, और उसके हिसाब से आपको अपना गोल सेट करना है। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आपने गोल सेट कर लिया कि हमारे को ये आमदनी चाहिए। अब क्या ये पॉसिबल है कि आपके गोल के मुताबिक ये आमदनी आपको हिंदुस्तान में हासिल हो सकती है? हो सकता है आपको ये आमदनी हिंदुस्तान में नहीं बाहर हासिल हो सकती है। तो फिर आपको ये भी देखना है कि बाहर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कितने सालों के लिए जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है आप बाहर जाएं तो हमेशा के लिए चले जाएं। बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप 2 साल के लिए 4 साल के लिए या परमानेंटली भी बाहर जाके सेटल हो सकते हैं। तो अब आपको ये जवाब देना है कि आपका गोल क्या है, आपने बाहर थोड़े टाइम के लिए जाना है या परमानेंटली जाना
0: है? बसने जाना है।
1: बसने जाना है
0: जी।
1: तो अगर तो आपने बसने जाना है तो फिर हम उस तरीके से आपके सवालों के जवाब और आपको आपसे ही हम बात करके आपसे समझेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जब हमारे को गोल और उद्देश्य क्लियर है उसके बाद हमारे को किसी चीज की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे को हर चीज का नापतोल करने का एक चीज मिल जाती है कि अगर ये चीज आपको डिसीजन उद्देश्य के पास लेके जा रहा है तो ठीक है, दूर लेके जा रहा है तो उसके बारे में सोचो नहीं
0: जी जी।
1: तो सब कुछ आसान हो जाता है उद्देश्य साफ हो तो।
0: क्या बात है, बहुत खूब। इस बात का मर्म यही है कि उद्देश्य साफ होना बहुत जरूरी है, पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो प्लानिंग आप करते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्लानिंग एक इंसान को आगे लेकर जरूर जाएगी। यहाँ पर चैलेंजेस की हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सो लिसनर्स, वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जाएं। ये तो रही बात एक नॉलेज की, जानकारी की, कि ये जानकारी अगर आपको है, आपका जो एक उद्देश्य है वो सब कुछ अगर क्लियर है तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा यहीं, कहीं आप जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान, खास शख्सियत है अमित बैजल जी, जो कि वीजा इन्फो के संस्थापक है। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है 0120406025 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पढ़ने पढ़ाने की बातें हो रही हैं, जिंदगी को जीने की बातें हो रही हैं, साथ ही साथ म्यूजिक की भी बातें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने स्टार्टिंग में रफी साहब का गाना आपके लिए प्ले किया और अभी ऑफ एयर मेरी बात हो रही थी सर से, तो वो कह रहे थे कि लता जी मेरे दिल के आसपास रहती हैं, उनके गानों को सुनकर सुकून मिलता है। तो यानी कि इस ब्रेक पर लता जी का गाना मैं आपके लिए जरूर प्ले करूंगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वीजा इन्फो के संस्थापक अमित बैजल जी और बहुत अच्छी जानकारियां हम आपसे साझा कर रहे हैं लिसनर्स। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने नॉलेज की बात की, गोल की बात की, तैयारियों की बात की। जानकारी का अभाव कम होता है जिसकी वजह से लोग राह भटक जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने हमारे सामने रखी। लेकिन अब उसके बाद जब हम एक स्टेप को आगे बढ़ रहे होते हैं, कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो ये भी सच है कि चुनौतियां फिर वहां से शुरू होती हैं। चाहे वो रुपयों की बात हो, चाहे वो ठगने वाली बात हो, चाहे वो दूसरे विदेश में रहन सहन की बात आती है, अपना सपन नहीं मिलता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 पॉइंट्स मैं आपको गिना पा रहा हूं।
1: जी,
0: आपकी नजर से वो चैलेंजेस क्या हैं?
1: देखिए, आपने बड़ी सही बात कही कि गाइडेंस किस आदमी से या किस शख्सियत से ली जा रही है वो बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जी,
1: यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपको बाहर भेजेंगे, आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे या काम करने के लिए भेजेंगे, और लोग अक्सर उस झांसे में पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत कम पैसा मांग रहे होते हैं या थोड़ा बहुत पैसा मांग रहे होते हैं और लोग वो जाके अपना काम शुरू करा देते हैं। लेकिन वो ये तहकीकात नहीं करते कि कितने लोग कामयाबी की सीढ़ी पे वो एक्चुअली में गए हैं। एक दूसरी चीज, अगर आप किसी कंट्री में बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये बाहर की सारी कंट्रीज अपने जो लॉयर्स होते हैं उनको एक लाइसेंस देता है। अगर आप किसी भी लाइसेंस्ड एजेंट, नॉट लाइसेंस्ड एजेंट इन इंडिया बट लाइसेंस्ड एजेंट इन द कंट्री जहां आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप कभी भी उन एजेंट्स के साथ काम करते हैं, तो आपको दो तरीके फायदे होते हैं।
0: एक, जैसे कि आप हैं,
1: जैसे कि हम हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है, हम जिम्मेवार हैं। अगर आपके साथ कोई भी नाइंसाफी होती है, हमारा लाइसेंस खतरे में आता है। तो जब किसी का लाइसेंस खतरे में आता है, तो वो मेक श्योर करता है कि हमारी रोजी रोटी के ऊपर कोई आंच ना आए।
0: सही सही।
1: अब हिंदुस्तान में देखा अक्सर ये जाता है कि किसी को अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप क्या करेंगे, शायद मतलब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मुझे तो ऐसा महसूस होता है क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं स्टूडेंट्स जिनके साथ ऐसा हुआ है,

0: कभी भी किसी की मुंह जवानी बात ना माने, जो चाहे वो हमारी कंपनी हो चाहे वो कोई भी कंपनी हो, जो भी वो आपको बोल रहे हैं आपका हक है उनसे वो लिख के लेने का।
1: क्या?
0: तो अगर तो वो लिख के देने के लिए तैयार है आप उनसे आगे बात कीजिए। अगर जो आदमी अपनी बात को लिख के देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उसकी बात पे जब उसको खुद को भरोसा नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं।
1: सही बात है, सही कहा आपने। सो लिसनर्स, इस बात का आशय यही निकल कर आ रहा है कि इन दो बातों को आप हमेशा ध्यान में रखें, या यूं कहें कि गांठ बांध लीजिए कि जो एजेंट हैं, जो काउंसलर हैं, क्या उनके पास वो हथियार है, यूं कहें कि जिसके बदौलत वो काम कर पा रहे हैं, लाइसेंस गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर आप उनसे मिलें, बात करें। दूसरी बात, सर ने जो बात आपको बताई कि फिर आपको दिक्कत परेशानी होगी नहीं और निश्चित तौर पर आपको उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, तो इन बेसिक बातों का आप हमेशा ध्यान रखें और गलत दिशा में आप न जाएं। अदरवाइज होता क्या है कि आप अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, आप रुपयों से रुपया आपका चला गया होता है और फिर इस तरीके के जो एजेंट्स हैं उनसे भी आपका विश्वास उठता चला जाता है। अक्सर सर हमने एक वर्ड सुना है हिंदुस्तान में, कबूतरबाजी, यानी कि ये चीज वही बातें हैं जो हम बात आप कर रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठ लिया जाता है, विदेश उनको भेजा जाएगा एजुकेशन के लिए, जो मैं बात कर रहा था कि धरातल पर कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, भिन्न होती हैं। तो आपकी बात का एक संदेश मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं ने समझ ही लिया होगा इसका जो मर्म है। जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे एक जहन में सवाल ये आ रहा है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के लिए आगे जाते हैं और कुछ लोग वहीं बस भी जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, बस जाते हैं।
1: तो क्या आप फर्क महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान की जो शिक्षा पद्धति है, विदेशों की जो शिक्षा पद्धति है, क्या एक अंतर आप महसूस करते हैं कि जिसकी वजह से लगता है कि, मैं समझ रहा हूँ कि आपने बताया कि मुझे 2 लाख रुपए महीना चाहिए, हिंदुस्तान में शायद उनको नहीं मिल पा रहा, यही एक वजह रहती होगी कि पैसा बाहर विदेशों में बहुत ज्यादा है, तो किस तरीके से इस बात को आप समझाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: देखिए, मैं आपको पर्सनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहूंगा कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो नोट किया है कि वो ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो बाहर मेहनत का आपको जेन्युइन फल मिलता है।
1: जी,
0: हिंदुस्तान में सभी मेहनती है और सभी मेहनत करते हैं, लेकिन एक मेहनत होती है एफिशिएंट मेहनत और एक होती है इनएफिशिएंट मेहनत। तो अब मुझे इतनी हिंदी नहीं आती कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट का आपको मतलब समझा सकूं, बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर तो आपकी मेहनत आप एक साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं और बाहर की कंट्री में कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। वहां पर आप की इज्जत काम की है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, ऑस्ट्रेलिया में एक प्लम्बर एक डॉक्टर से ज्यादा कमाता है। तो अब आप सपने में भी नहीं सोच सकते ये वाली बात कि एक इंडिया में एक प्लम्बर एक सर्जन से ज्यादा कमा ले, लेकिन ये फैक्ट है। एक इलेक्ट्रिशियन की अपॉइंटमेंट बाद में मिलेगी, डॉक्टर की पहले मिलेगी। ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं बाहर के, लेकिन ये वाले फैक्ट्स ऑफ लाइफ इंडिया में अभी आपने कभी देखे ही नहीं, आपकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको कभी दिक्कत आ सकती है।
1: कर है आपकी बात
0: तो ये फैक्ट बात है। देखिए, बाहर क्या होता है कि बाहर काम की कदर है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। सुबह जो कूड़ा लेने के लिए आते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब उनकी होती है।
1: ग्रेट,
0: और 4 घंटे से 5 घंटे का काम होता है,
1: जबकि हिंदुस्तान में ऐसे कर्मचारियों को हीन भावना से देखा जाता
0: है। बिल्कुल, देखिए वही मैं बात बता रहा हूँ कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे कल्चर में जहाँ सब सामान्य, देखिए वासुदेव कुटुम्बकम हमारे देश की एक संस्कृति है, लेकिन उसका एक्चुअली में पालन मैं बाहर जाके देखता हूँ।
1: क्या बात है, वाकई ये तो बात आप बहुत अच्छी बता रहे हैं हमें कि इस तरीके से जमीन आसमान का फर्क आप वहाँ महसूस करते हैं। सिर्फ यहाँ जो बातें हैं शायद वो कहने के लिए रह गई हैं। धरातल वाली बात मैं जब लेकर आता हूँ तो शायद इसलिए लेकर आता हूँ कि प्रैक्टिकली हम उन चीजों को नहीं देख पा रहे। एक बात मुझे ये भी समझ में आती है कि राजनीति हर जगह है, बहुत बुरी है। अगर इंसान आगे बढ़ रहा होता है तो उसको कहते हैं ना कि लैग पुलिंग की जाती है, उसको बढ़ावा नहीं मिलता। आपने जो बात रखी कि एक इलेक्ट्रीशियन को तनख्वाह बहुत ज्यादा मिलती है, एक सफाई कर्मचारी का वहाँ सम्मान होता है, मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान में भी समय बदल रहा है।
0: जी,
1: शायद हो सकता है कि पुरानी सरकारों ने कुछ किया, वर्तमान सरकार कुछ कर रही है और आने वाले समय में पिक्चर चेंज होगी। हिंदुस्तान में 5 से 7 साल पहले सर हमने नहीं सुना था, हम जरूर सुनते थे किताबों के माध्यम से कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है।
0: जी,
1: आज एक मूवमेंट चल रहा है, एक अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत। तो लोगों की सोच बदल रही है।
0: बिल्कुल,
1: और ये सोच बदलना

0: बहुत जरूरी है।
1: देखिए जब लोग बाहर जाएंगे, जब बाहर जाके, अब पहले दुनिया में बहुत कम लोग बाहर जाते थे
0: जी,
1: अब आज इंटरनेशनल एयरलाइंस इतनी सस्ती हो गई हैं कि बाहर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, तो बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। और जब कोई भी इंसान बाहर जाता है और वो बाहर की रहन सहन को देखता है, तो वो ये सोचता है कि ये जो बाहर हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं, ये सवाल आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि जब बाहर जाते हैं तो चाहे वो हम इंडियंस हों चाहे किसी और कंट्री के लोग हों, सारे एक ही रूल फॉलो करते हैं और सारे बड़े तमीज से वो रूल फॉलो करते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का, रूल ऑफ लॉ है बाहर,
0: बाहर
1: हिंदुस्तान में भी रूल ऑफ लॉ है, लेकिन दिखाई नहीं देता अक्सर कि जिसका जिसका जो मन कर रहा है वो
0: जी,
1: कर रहा है।
0: जी, जी, आपने तो बिल्कुल बात ऐसी कह दी कि इस बात से एक और बात छेड़ने का मन कर रहा है कि अगर आप जनपद की तरफ जाते हैं तो रूल्स वहां आपको दिखाई देगा
1: जी।
0: जैसे आप पिछड़े इलाकों की तरफ चले जाएं जहां मतलब कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि गाड़ी में किसी ने बेल्ट नहीं पहनी है या ओवरटेक गलत दिशा से कर रहा है या रेड लाइट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कहने का आशय लिसनर्स यही है कि हमें हर जगह अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। जहां आप अपनी समझदारी का परिचय देते हैं तो आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है और जिसकी वजह से उस इंसान से हर कोई मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। यही एक वजह है कि अमित बैजल साहब से बात करकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है और यहां उनकी बातों के माध्यम से मैं ऑस्ट्रेलिया को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के माहौल में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और लता जी की आवाज में कोई गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो या हम ही खुद प्ले कर रहे
1: आप
0: चलिए। तो लता जी का खूबसूरत गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुरशादा 90.8 FM पर। जिंदगी में खुश रहने के लिए म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो इसलिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। शारदा विश्वविद्यालय का ये एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। जाहिर सी बात है कि शारदा विश्वविद्यालय में दूर दराज से शिक्षा लेने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, अपने आप को तराश रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा कि खुद से सवाल करिए, खुद का आकलन करिए। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो एक अच्छे काउंसलर से आप मिलिए, अच्छे एजेंट से आप मिलिए जिनके पास लाइसेंस है। अगर गलत व्यक्ति से मिलेंगे तो मैं समझता हूं कि उस पद्धति से, उस पेशे से हमारा विश्वास भी उठता चला जाएगा। इसलिए जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीजा इन्फो के संस्थापक ऑनर अमित बैजल साहब। तो बैजल साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ये बातें मैंने गांठ बांध ली और यही वजह है कि मैं अपने श्रोताओं तक रिपीट करके वो बातें पहुंचा रहा हूं।
1: बिल्कुल,
0: कि हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सर, मुझे बात करके वाकई बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए भी सीखने समझने की ये बातें हैं। फाइनली एक संदेश जो आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहते हो, हमारे पेरेंट्स के लिए कहना चाहते हो, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए कहना चाहते हो, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम सुधर रहा है या इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में 20 साल का लगभग समय गुजारा है, तो फाइनली एक संदेश आपकी तरफ से क्या होगा?
1: देखिए, मैं यही संदेश दूंगा अपने श्रोताओं को, खासकर उन श्रोताओं को जो अब या तो 12वीं की परीक्षाएं दे चुके हैं और बाहर जाने की तैयारी में लगे हैं, या उन श्रोताओं को जिन्होंने ग्रेजुएशन खत्म करी है और अब अपनी जिंदगी में क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, कि आप सभी लोगों को सबसे पहले एक अच्छे काउंसलर और अच्छे लाइसेंस्ड एजेंट की जरूरत है। आप उनके साथ जो भी बात करें, राइटिंग में करें, ओरली कोई बात जबानी की बात नहीं होती है। जो भी आपको प्रॉमिस किया जा रहा है, जो भी आश्वासन आपको दिया जा रहा है, चाहे वो आपका एजेंट दे रहा है, चाहे वो कोई भी दे रहा है, वो हर एक आश्वासन को आपको पेपर पे लिखवा के लेना जरूरी है। अगर आपको वो देने के लिए तैयार नहीं है, आप अपना एजेंट बदल दीजिए, क्योंकि जो सच बोलता है वो लिखने के लिए कभी मना नहीं करेगा, और जो आपको सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है वो क्लिक के कभी नहीं देगा। तो एक तो आप इस कसौटी पे हर एक एजेंट को तोलना शुरू कीजिए। दूसरा आपको मैं ये कहूंगा कि अपनी तैयारी कीजिए, अपना लक्ष्य बांधिए। आपको अपनी जिंदगी से चाहिए क्या, जैसे मैंने कहा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट तक का रास्ता क्या आप को पता है, और अगर पता है तो किसी कंसल्टेंट के पास, जैसे हम लोग होते हैं, आप हमारे पास आइए, हमसे बात कीजिए, हम आपके साथ आपकी बात करेंगे, आपको समझेंगे, और उसके बाद आपको हम आपको आपका सोल्यूशन भी आपके सामने रखेंगे, और हो सकता है कोई और सोल्यूशन जो बेटर सूटेड हो वो भी आपके सामने रख सके। ये हमारा प्रोफेशन है। अब आप जब हमारे पास आएंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ समझने को मिलेगा, जो मैं आपको इतने छोटे प्रोग्राम में तो नहीं सिखा सकता।
0: मैं वही जानना चाह रहा था कि फाइनली मैं इसी बात पर आता कि कोई अगर आपके पास आना चाहता है, आपसे संपर्क साधना चाहता है, तो वो क्या माध्यम होगा?
1: देखिए, वीजा इन्फो आज की डेट में गूगल देवता हमें हर एक चीज का दर्शन करा देते हैं। तो आप वीजा इन्फो ऑस्ट्रेलिया टाइप करेंगे तो आपको हमारा फेसबुक पेज भी मिलेगा, आप वीजा इन्फो टाइप करेंगे तो आपको हमारे ऑस्ट्रेलियन ऑफिस का एड्रेस भी मिलेगा, हमारा ईमेल एड्रेस भी मिलेगा। मेरा नाम अमित है, amit@visainfo.com.au पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी सवाल है आप मुझे बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आपके श्रोता आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हम तक उनकी
0: आवाज
1: पहुंचाएंगे। बिल्कुल,
0: रियली नाइस टॉक टू यू सर। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके भविष्य के लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद, धन्यवाद।
0: सो लिसनर्स, आप थे हमारे साथ अमित बैजल साहब, जो कि संस्थापक हैं वीजा इन्फो के। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। हम तो बस यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुरुओं का सम्मान करते रहिए, क्योंकि ये सम्मान जब आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उनसे बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताना ना भूलेगा। बस मुझे दीजिए अनुमति, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की कोई जरूरत। सुनते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार,
1: धन्यवाद।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
3: जी दीदी,
2: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओके रा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
4: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.com।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी RNTCP नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने 500 रुपए उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: राम राम, दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:25 हो चुके हैं, 11 तारीख है। हमारे आसपास मौसम के मिजाज क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा और NCR क्षेत्र में आसमान में घने बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मौसम की आंख मिचोली रहेगी, लेकिन NCR का हाल यह है कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के थोड़े से आसार हैं। तो कुल मिलाकर बारिश के मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। आज का दिन बड़ा ही खास दिन है, आज है मंगलवार, तो बजरंग बली की हम सब दुआ प्रार्थना शुभकामनाएं अपने साथ रखते हैं। और साथ ही साथ एक और खास पर्व है आज, यानी कि मंगलवार 11 अगस्त 2026 को पूरे देश NCR में सावन शिवरात्रि का पावन पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रावण पक्ष की जो चतुर्थी जो तिथि है वो आज देर रात 1:52 तक रहेगी और जिसके चलते शिव भक्त और कांवड़ी आज दिन भर महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मुहूर्त है, पूजा विधि है, उस पूजा विधि का जो परिणाम है, जो कहते ना फल आप सबको मिले, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा चल रही है, डाक सेवा चल रही है, लोग पैदल भागे जा रहे हैं, अपने व्हीकल से जा रहे हैं और सुरक्षा के जो चाक चौबंद हैं, ट्रैफिक भी, यानी ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है। तो कांवड़ियों को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोले की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे ट्रैफिक अपडेट के बारे में। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: साथ।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
0: वक्त सदा एक सा नहीं रहता, कब क्या हो जाए हम नहीं जानते, इसलिए ईश्वर को, खुदा को, पिता परमेश्वर को हमेशा याद रखें। दरअसल कोलंबिया में सोमवार को 7.4 तीव्रता के भूकंप में अब तक 132 लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है, 570 से ज्यादा लोग घायल हुए, कई लोग लापता हैं, जनधन हानि हुई है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग घायल हैं उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से एक छोटी सी अपील। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि जब समय एक सा नहीं रहता तो क्यों ना हम अच्छे काम करें, लोगों को अपना बनाकर चलें। लेकिन इसके इतर विपरीत हमने ये भी देखा कि छोटी छोटी बातों पर लोग अक्सर नाराज हो जाते हैं, ट्रैफिक में झगड़े हो जाते हैं और बात यहां तक बिगड़ जाती है, जनधन हानि हो जाती है। सो प्लीज प्लीज आज के इस पावन पर्व पर एक छोटा सा वादा अपने आप से करिए, समाज से करिए कि खुशनुमा माहौल हम बनाकर रखेंगे। चलिए दिल्ली NCR की जो ट्रैफिक अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का इशारा मैंने आपको कर दिया। कांवड़ यात्रा अपने पूरे चरम पर है, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की जो धूम है वो देखते ही बन रही है। आज जल चल रहा है और जिसके कारण सड़कों पर शिव भक्तों की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा भीड़ है। रूट डायवर्जन किए गए हैं, यानी कि गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर और बागपत के पुरा महादेव मंदिर के आसपास विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी लागू है। दिल्ली, नोएडा और नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर वाले रास्तों पर गाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है, तो अगर वहां ट्रैफिक है तो वहां से आप जाने से बचेगा, और उससे पहले ट्रैफिक के बारे में मालूमात आप हासिल कर सकते हैं, है ना। और विशेष पूजा के साथ पूजा अर्चनाएं मंदिरों में चल रही हैं, भोले बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और बस यही कहूंगा कि नियम संयम कायदे कानून के साथ आप आगे बढ़िए, और जीवन में भी नियम संयम रखेंगे हम तो अनुशासित रहेंगे, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो हमारे फेवर में जरूर आएंगे, और फिर हमारी ईश्वर मदद करेगा ही करेगा। हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। और इस सावन शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। तेरी जुस्तजू, टाइटल ट्रैक फ्रॉम तेरी जुस्तजू।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800 11 6666 पर संपर्क करें।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:40 हो चुके हैं, 11 तारीख है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि कोलंबिया में जो भूकंप आया जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानियां वहां बहुत ज्यादा हुई हैं, 2000 से ज्यादा लोग लापता हैं, 6 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं और जनधन की हानि बहुत ज्यादा हुई है, आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। अब हमें संभलने की जरूरत यह है कि अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके साथ हमारे साथ बन जाए तो ऐसे समय में हम क्या करें। मुझे लगता है कि कुछ छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, हमेशा अलर्ट रहें, सतर्क रहें। जैसे कि तुरंत जमीन पर घुटनों के बल आप बैठ जाएं, किसी मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे छुप कर खुद को कवर आप कर लें और जब जो झटके हैं झटके रुक जाएं तो तब तक उस फर्नीचर को मजबूती से आप पकड़ कर रखें और कांच की जो खिड़कियां हैं, जो शीशे हैं, भारी अलमारियों और पंखों से अपने आप को दूर रखें और लिफ्ट का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें। और जो इमारत हैं, पेड़ हैं, बिजली के खंभों और जो पुल हैं उनसे अब आप आपने आपको दूर रखेगा। और अगर आप कहीं व्हीकल में आ जा रहे हैं तो गाड़ी चला रहे हैं तो उसे किसी सुरक्षित और खुली जगह पर आप रोक लें, गाड़ी के अंदर ही बैठे रहें और झटके रुकने का आप इंतज़ार करें। ये तो रही पहले की बात, अगर भूकंप के बाद हम क्या करें। ये भी एक्सपर्ट कहते हैं कि झटके रुकते ही घर के जो गैस सिलेंडर रेगुलेटर हैं, बिजली के जो मेन स्विच हैं, उनको आप बंद कर दें ताकि आग लगने का जो खतरा है वो ना रहे। और भूकंप के बाद भी छोटे झटके आ सकते हैं, इसके लिए भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। ये एक खास पॉइंट निकलकर सामने आया कि भूकंप के बाद भी छोटे से झटके आपको महसूस हो सकते हैं। और सबसे खास बात, बड़ी बात, अच्छी बात की केवल रेडियो, टीवी या आधिकारिक सरकारी चेतावनियों पर ही भरोसा करें, यानी कि अफवाहों से आप अपने आप को बचा कर रखें। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन अगर परेशानी आती है सामने तो हमें सावधानी बरतने की बहुत बहुत जरूरत है। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम ये बातें भी आप तक प्रेषित करें। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:55 हो चुके हैं। हमारे आसपास और क्या खास उसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। खास बात यह है कि आज है सावन की शिवरात्रि, तो भोले बाबा की जो कृपा है वो आप सब पर बनी हुई है, आगे भी बनी रहे। और बस यही कहेंगे कि ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने जो हम सबको सदमार्ग का जो रास्ता दिखाया, बस उस पर चलते रहिए, कहीं पर भी रहिए और खुश रहिए। आए हाय, चले हंसते मुस्कुराते हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ट्रैफिक थोड़ा स्लो है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि कावड़ यात्रा की वजह से ये थोड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि एक दूसरे का हम सहयोग करें ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें। हम सबका यह भी फर्ज बनता है कि जो अफवाहें हैं हम आगे उनको भेजना है ना। ग्रेटर नोएडा में क्या खास है उसके बारे में भी जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। आज से इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 3 दिवसीय यानी कि इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का शुभारंभ हो गया है। लख लख बधाइयां। और स्कूलों में अवकाश नहीं, हमारा तो विश्वविद्यालय नहीं, हमारे पास स्कूल्स भी हैं। हाँ ये भी चाहिए, तुम छुट्टी चाहते हो, मैं समझ गया। सुनने में आ रहा है कि सावन शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के चरम को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार 11 अगस्त को ग्रेटर नोएडा और नोएडा के जो सभी स्कूल्स हैं वो बंद हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, यानी कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कमर्शियल जो व्हीकल हैं उनके लिए रूट डायवर्जन लागू है। कालिंदी कुंज डीएनडी और दिल्ली नोएडा बॉर्डर वाले रास्तों पर भारी ट्रैफिक और जाम की स्थिति बनी हुई है। तो ये छोटी छोटी अपडेट्स थी। हमेशा अपडेट्स के लिए अप टू डेट रहने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन गड्डी बुरी होश आवाज में चलाएगा। वक्त इशारा में हो तो 9:11 आए हाय, चाहे तो वॉल्यूम अप कर लीजिएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

0: सुना शारदा 90.8 FM। मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान चल रहा है, तो इसी क्रम में सुनते हैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम जो आपको टीबी के प्रति जागरूक करेगा और आप इस बीमारी से बच पाएंगे और अपने परिवार को बचाएंगे, साथ ही साथ औरों को भी जागरूक करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम जो आधारित है 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में और बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ और जागरूक रख सकते हैं। आज हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा से ही लोगों को सेहतमंद रहने के लिए प्रेरित करने में हमारी सहायता करते हैं और आज का एपिसोड तो आप जानते ही हैं कि बहुत खास है।
2: श्रेयसी, बिल्कुल जानता हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया, साथ ही साथ हमारे सहयोगी शशि कपूर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का जो एक मुहिम चला रही है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। उसमें हम सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमें सहयोग मिल रहा है एक जो संस्था है जिसका नाम है स्मार्ट। उसी के तहत हमने एक वादा किया है कि कुछ विशेष कार्यक्रम करेंगे, जैसे कि आज हम यहाँ पर रेडियो पर चर्चा परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, कुछ पोस्टर मेकिंग के कार्यक्रम हो रहे हैं और भी बहुत कुछ। बड़े बड़े अधिकारी भी हमसे जुड़ रहे हैं जो कि टीबी के विषय में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। मैं तो आपका और आपके रेडियो का बहुत खूब ध्यान करता हूँ क्योंकि आप कितने लोगों को सेहत के विषय में जानकार बना रहे हैं। गांव में निकल जाओ, किधर भी निकल जाओ तो चहुं ओर यानी कि चारों दिशाओं में सुनो शारदा 90.8 FM की चर्चा होती है।
0: बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेहतिया सिंह जी। आप और भाभी हमारे साथ ना जुड़े तो भला हम कहां से इतनी जानकारी दे सकते हैं।
2: भाई भाभी का आपने जिक्र कर दिया है तो चलो खरी अंदर की बात है भैया। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज हुई थी, इसलिए 24 मार्च को एक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है।
1: तो ये इतनी पुरानी बीमारी है और हम इससे आज तक जूझ रहे हैं।
2: शेसी, आपने बहुत सही सवाल किया, यही तो दुखद बात है लेकिन ये सच है। और आज भी हमारे देश में अनेकों प्रयासों के बाद भी लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते, समय पर टेस्ट नहीं करवाते, समय से दवाई नहीं लेते और सावधानी तो बिल्कुल ही नहीं बरतते।
1: सही कहा आपने। हम भी तो लंबे समय से अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए टेस्ट और इलाज की जरूरत है। टीबी से डरने की या उसके लक्षण को छिपाने की जरूरत नहीं है।
0: सही कहा तुमने कि टीबी से घबराने की जरूरत तो है ही नहीं।
2: भाई शशि, इसका तो बहुत ही छोटा सा फंडा ये है कि जागरूक रहो और समय रहते बिना किसी बहानेबाजी या लापरवाही के टेस्ट करवाओ। हाँ, रही बात टेस्ट की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शारदा अस्पताल का टीबी विभाग इसमें सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मरीज आते हैं जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और हमने लोगों को जागरूक भी किया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो अगर आप किसी भी संक्रामक व्यक्ति के टच में आए हो या आपको कोई भी टीबी का लक्षण दिखाई दे तो टेस्ट जरूर करवाएं और अगर पॉजिटिव हो तो अपने इलाज के लिए तैयार हमेशा रहें।
0: ये सब तो सही कह रहे हो आप सेहतिया सिंह जी, तो क्यों ना हम एक बार फिर अपने श्रोताओं को टीबी से संबंधित कुछ जरूरी बातें बता दें।
2: क्या बात है, ये तो आपने हमारे मन की बात ही छीन ली, क्यों नहीं। सो दोस्तों, आपने टीबी या क्षय रोग या फिर तपेदिक के बारे में तो आप सब जान ही गए होंगे, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि क्षय रोग भारत के लिए गंभीर समस्या बन गई है, जो ये एक संक्रामक और हवा से फैलने वाला रोग है, जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक हवा के माध्यम से पहुंचता है। टीबी के चलते प्रतिदिन लगभग 4000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। इस बात को ध्यान रखे, अंडरलाइन कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हर रोज 4000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। सोचिए, उसमें से एक डॉक्टर हो सकता था, इंजीनियर हो सकता था, एक क्रिकेटर हो सकता था और किसी की जान टीबी की वजह से चली जाए, जबकि हमारे पास इसका इलाज संभव है, तो ये सोचने की बात है। और करीब 28,000 लोग, श्रेयसी और शशि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बीमारी के शिकार होते हैं।
1: तो सेहतिया भैया, इसके लक्षण क्या क्या है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए।
2: भाई श्रेयसी, आप बहुत समझदारी वाली बात कर रही हैं। अच्छा लग रहा है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए इस प्रोग्राम को आगे लेकर जा रहे हैं। लक्षण की बात ये सामने आती है कि लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना। श्रोताओं ध्यान से सुनना, खांसी में खून आना, तेज बुखार और रात को पसीना आना, बिना किसी कारण अचानक वजन कम होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना और शरीर में सुस्ती रहना, छाती में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना।
0: बिल्कुल, कल ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर के डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि कई शोधों से ये साबित हुआ है कि लगभग हम सभी टीबी बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं। केवल गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही नहीं, बल्कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति इस बैक्टीरिया से प्रभावित हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि टीबी का बैक्टीरिया कैसे और कब सक्रिय होता है। हम रोजाना भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं और कई लोगों के संपर्क में आते हैं। टीबी का बैक्टीरिया किसी के भी शरीर में मौजूद हो सकता है, लेकिन ये असिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है, यानी इसके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते। हालांकि जब तक आप युवा और स्वस्थ हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम कर रही है, तब तक आपका शरीर इस बैक्टीरिया को नियंत्रित रखता है, उसे एक तरह से कैप्सूल में बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, टीबी सक्रिय हो जाता है और रोग फैलने लगता है।
1: मतलब है कि जब आप मजबूत रक्षा और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ स्वस्थ हैं, तो कैप्सूल के अंदर रोगाणु जीवित रहेंगे और कोई नुकसान नहीं करेंगे।
2: भाई आप दोनों बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो सेहतिया सिंह अच्छी बातों के साथ कुछ और अच्छी बातें कर ही लेता है। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दोनों। बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर लंबे समय तक, यहाँ तक कि कई सालों तक रह सकते हैं। जब ये बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर होता है तो आप संक्रामक नहीं होते हैं और टीबी के कीटाणु को नहीं फैला सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपका बचाव सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपको जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां या मधुमेह या HIV जैसी पुरानी बीमारियां हो सकती हैं, या आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को उतना मजबूत नहीं बनाती है, जैसे कि कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या स्टेरॉयड, या यदि आप धूम्रपान करते हैं, या आप बहुत अधिक शराब पी रहे हैं, या अच्छी तरह से नहीं खा रहे हैं और अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आपका ये कैप्सूल कमजोर हो जाता है, बैक्टीरिया बाहर निकल सकता है और आप संक्रमित हो सकते हैं।
0: वाह सेहतिया जी, आप तो वाकई ज्ञानी भी हैं और इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को इतनी सरल भाषा में समझा भी देते हैं। आपने सही कहा, यदि आप अस्वस्थ हैं या लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो बैक्टीरिया आपके फेफड़ों या शरीर के किसी अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं।
1: और जब आप संक्रमित होते हैं, तब आपके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आप उन्हें अगर नजरअंदाज कर देते हैं तो आपकी समस्या गंभीर हो सकती है। इसीलिए कोई भी लापरवाही ना करें और अपनी जांच तुरंत करवाएं।
2: सो लिसनर्स, कहने का मतलब यही है जो श्रेयसी और हमारे शशि भैया बातें आपको बता रहे हैं, इन बातों को गांठ बांध लीजिए। और हाँ, एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये है कि टीबी की दवा केवल उचित जाँच और परीक्षण के बाद ही ली जानी चाहिए और केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से ली जानी चाहिए। और दवा की ये खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समय का बड़ा महत्व है। देखिए डॉक्टर कहते हैं कि दवा की प्रत्येक खुराक समय पर लेनी चाहिए। जब आप समय पर लेंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको मिलेगा और एक महीने के अंदर कीटाणु कमजोर हो जाएंगे और आप किसी और को संक्रमित नहीं कर पाएंगे।
1: लेकिन अगर आप दवाओं का पूरा कोर्स नहीं लेते हैं तो टीबी वापस आ सकता है और टीबी का एक मजबूत रोगाणु बन सकता है। जब ऐसा होता है तो एक से बढ़कर एक एंटीबायोटिक्स भी कीटाणुओं पर काम नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल श्रेयसी, लेकिन इस अवस्था को प्रतिरोधी टीबी कहते हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी अधिक जटिल होती है और इसका इलाज करना भी कठिन होता है।
2: ये तो आपको हमने पहले भी बता दिया है कि देश भर के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्रों और सुविधाओं में जांच, परीक्षण और उपचार पूरी तरह से निशुल्क है। यदि आपको कोई संदेह है तो कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 800-11-4x6 यानी कि 4 बार 6 पर कॉल करने में संकोच ना करें। एक बार पुनः बता देता हूं हिंदी में, 1800-11-66-66 पर कॉल करने में बिल्कुल भी आप संकोच ना करें। और पता करें कि आपके लिए सबसे निकटतम केंद्र कहां पर है।
1: और सेहतिया भैया, मैं यहाँ ये भी जोड़ दूं कि आप अपने फोन पर टीबी आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जिले में सरकारी और निजी क्षेत्र के टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर जा सकते हैं। आप उन स्वास्थ्य सुविधाओं पर बिंदु व्यक्तियों के नाम और संपर्क नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं।
2: तो आप तो जानते ही हैं कि हर जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग का काम चल रहा है। सरकार टीबी मुक्त भारत के मिशन को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। अगर आपको टीबी बीमारी के लक्षण हैं, तो जल्द से जल्द जांच करवाएं। जितनी जल्दी टीबी का पता लगाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है, उतना ही इसका आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों में फैल सकने की संभावना कम हो जाती है और आपके लिए भी पूरी तरह से ठीक होने की और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का मौका होता है।
0: बिल्कुल सियतिया जी, लेकिन मैं आपकी बात में कुछ बातें भी जोड़ना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जांच स्वयं करानी होगी। ऐसा ही नहीं है कि अगर एक व्यक्ति का इलाज हो रहा है तो आप वही दवा ले सकते हैं और अपने टेस्ट करवाने से या खुद का इलाज करवाने से बच सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रोगियों पर कई अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है जो उनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। टीबी के कुछ रूप कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं और ये आपको केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं।
2: भाई शशि कपूर साहब, आपने बात अच्छी कही, मैं इस बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। तो बात यही समझ में आती है कि यदि आप टीबी पॉजिटिव हैं लेकिन दवाई ले रहे हैं तो आपको आमतौर पर इस दौरान अलग रहने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि संक्रमण को अपने परिवार और दोस्तों में फैलने से रोकने के लिए कुछ बुनियादी सावधानियां बरतना हमेशा अच्छा होता है।
0: तो सेहतिया जी, आप हमारे श्रोताओं को एहतियात के बारे में भी बताएं।
2: भाई आप कहें और हम ना बताएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको टीबी है तो सबसे पहले अपने अपने परिवार और अपने दोस्तों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम, स्कूल या कॉलेज से तब तक दूर रहें जब तक कि आपकी टीबी उपचार टीम आपको ये सलाह न दे दे। खांसते छींकते या हंसते समय अपना मुंह ढक लें। खांसने या छींकने के बाद हाथ धोने की आदत सुनिश्चित करें। किसी भी इस्तेमाल किए गए टिश्यू को सावधानी पूर्वक एक सील बंद प्लास्टिक बैग में फेंक दें। जहां आप रहते हैं वहां ताजी हवा की अच्छी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खिड़कियां खोलें। यदि भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं तो हवा का संचार सुनिश्चित करने के लिए पंखे का प्रयोग करें। दूसरे लोगों के साथ एक ही कमरे में सोने से बचें। साथ ही नियमित रूप से दवाई लें।
0: बिल्कुल, लेकिन मैं उन श्रोताओं के लिए जो अपने परिवार के किसी टीबी संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हैं एक सलाह देना चाहूंगा कि वे भी अपनी जांच करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी संक्रमित हों। ये सिंपल टेस्ट होते हैं। इन परीक्षणों में छाती का एक्सरे या कुछ रक्त परीक्षण, त्वचा परीक्षण या फिर थूक परीक्षण शामिल हो सकते हैं।
1: और कृपया लक्षणों को हल्के में ना लें, क्योंकि याद रखें कि केवल इलाज से ही टीबी की रोकथाम की जा सकती है और टीबी के रोगियों को ठीक किया जा सकता है। अनुपचारित टीबी घातक बन सकती है, हालांकि मौत कम होती है और यहां तक कि अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सावधानी पूर्वक और नियमित रूप से पालन किया जाना चाहिए।
2: भाई श्रीसी, आपने बहुत अच्छी तरीके से सीधे सच्चे शब्दों में हमारे श्रोताओं को आपने समझा दिया। मैं यूँ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में ऐसी सोच बनी हुई है कि टीबी हो गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो ये नहीं जानते कि टीबी की सही समय पर अगर जांच और इलाज हो तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है। और यदि नियमित रूप से दवाई ली जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में ऐसी सोच बनी हुई है कि टीबी हो गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वे ये नहीं जानते कि टीबी की सही समय पर अगर जांच और इलाज हो तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है, और यदि नियमित रूप से दवाई ली जाए तो इसका इलाज भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, लेकिन सेहतिया जी, इलाज के लिए जरूरी है जांच। टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के कारण वर्ष 2019 से अनुमानित 6.3 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकी है। 2022 में कुल 20.77 लाख टीबी के मामले सामने आए और वर्ष 2022 में 100 करोड़ से ज्यादा कमजोर आबादी की टीबी की जांच की गई।
2: भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी शशि कपूर साहब, आपने जो पढ़ाई की है बहुत अच्छी की। जो मैंने सुना कि 20.77 लाख, बड़े अच्छी तरीके से आपने इसको उच्चारित किया। तो बात टीबी पर आते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई भी टीबी पॉजिटिव या बैक्टीरिया से संक्रमित रोगी है तो उसको दवाओं सहित निशुल्क निदान और उपचार की सुविधा भी प्रदान की जाती है। आपको पता है कि सरकार टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए जो टेस्ट ट्रीट एंड ट्रैक का मुहिम कोविड से लड़ाई लड़ने में अपनाया गया था, उसी मॉडल को टीबी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
0: बिल्कुल सेहतिया जी, आपकी बातों से हमें ऐसा भरोसा प्रतीत हो रहा है कि हम टीबी मुक्त भारत बनाने में जरूर सफल होंगे। भागीदारी से तो कुछ भी संभव हो सकता है। याद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कोविड वैक्सीनेशन पर सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया था और उसमें सफलता भी पाई थी, उसी प्रकार इस बार हम टीबी पर वार करने में सफल होंगे।
2: मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि टीबी मुक्त भारत के लिए घर घर स्क्रीनिंग और मुफ्त सीबी नेट ट्रू नेट की जा रही है, यानी कि ये एक जांच का नाम है जिससे सुधार साफ नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार निश्चय मित्रों के जरिए समुदाय की भागीदारी बढ़ा रही है, जहां व्यक्ति या संगठन टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें सही पोषण, दवाइयां और मानसिक समर्थन देते हैं।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों टीबी से लड़ने के लिए दवा ही नहीं बल्कि सही पोषण की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए सरकार द्वारा चलाई जा रही निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता प्रदान की जाती है। यदि हमारे श्रोता चाहें तो वे भी निक्षय मित्र बन सकते हैं और किसी भी टीबी रोगी को गोद ले सकते हैं और इस मुहिम में अपना योगदान दे सकते हैं।
2: भाई मैं इतना उतावला हो रहा था कि तुम्हारी बात रुके, लेकिन मैं ऐसा लगा मैं कह गया कुछ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था भाई शशि कपूर साहब, इस मुहिम में लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और देखिए हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग अच्छे अच्छे काम की पोस्ट डालते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर भी आप आइए, इस सरकार की मुहिम से जुड़िए, लोगों की मदद करिए, उनको दोस्त बनाइए, और टीवी मरीज हम में से आप में से ही है, डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कपूर साहब कि भारत को टीबी से निदान दिलाने के लिए टेक्नोलॉजी भी कमाल का साथ दे रही है। निश्चय पोर्टल का उपयोग रियल टाइम मरीज ट्रैकिंग, उपचार निगरानी और चिकित्सा उपचार के पालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे मरीजों तक समय रहते बेहतर मदद पहुंचाई जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा सेहतिया जी आपने। तो दोस्तों याद रखिए, टीबी का इलाज होगा अधूरा तो टीबी मुक्त भारत का सपना नहीं होगा पूरा।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: तो सेहतिया जी, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं, हमारे जो सुनने वाले हैं उनके साथ साझा की, और जरूर हमारे सुनने वाले लिसनर आपकी बातों का बखूबी ध्यान रखेंगे। तो चलते चलते अब शपथ भी ले लें।
2: जी बिल्कुल,
3: हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम सब अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई, टीवी हारेगा देश जीतेगा।
0: बिल्कुल, अब मुझे समझ आया कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है। इसे बनाए रखें, सही जानकारी लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए सेहत सही लाभ कई के साथ।
4: मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह। सो जैसा कि आप जानते हैं, स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर सुनो शारदा 90.8 FM पर एक खास कार्यक्रम चल रहा है, सेहत सही लाभ कई। इसका उद्देश्य यही है कि टीबी को हराना और देश को जिताना है। इसमें हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सुनो शारदा की टीम को मरीजों से मिलवाया, उनके इंटरव्यू दिलवाए, निक से मित्र के बारे में बताया और समय समय पर FM के साथ मिलकर टीबी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और श्रोताओं तक पहुंचाया। देखिए, मेरा टीबी के मामले में फिर से यही संदेश है कि अगर टीबी को हम हराना चाहते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द की फॉर दैट। तो मैं ये कहूँगा कि आप लक्षण हैं अगर आप, तो आप उसको छुपाएं नहीं, और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी को, आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में किसी को हैं, तो ये हम सब लोगों का भी फर्ज बनता है, इसमें कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है कि उसको लेकर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाएं। अब जैसे मैंने कहा कि अभी अर्ली डायग्नोसिस मतलब शुरुआती, जब लक्षण कम हैं और जब हम अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या सीटी स्कैन कराते हैं तो हम देखते हैं कि लीजन बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसे में कई बार चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं स्पुटम वगैरह की जांच में, तो उसके लिए कुछ आधुनिक यू कैन की फैसिलिटीज जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी, कोई छोटा सा लीजन है तो वहीं, जिसको दूरबीन वाली जांच भी बोलते हैं, वहीं से धुल के बलगम को निकालना और उसमें जांच कराना, या फिर कई बार फेफड़ों के बाहर में झिल्लियों में पानी भर जाता है तो उसमें थोरेकोस्कोपी अल्ट्रासाउंड से निकालना, उसकी जांच करना। तो एक तो ये सभी सुविधाएं जैसे ब्रोंकोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी, यहाँ तक कि डायग्नोसिस बनाना सिंपल टीबी की, एमडीआर टीबी की, और इन सभी का ट्रीटमेंट चाहे वो सिंपल टीबी हो या एमडीआर टीबी हो, शारदा हॉस्पिटल में उपलब्ध है, निःशुल्क है उसकी जांच भी, और किसी भी तरह की टीबी का इलाज भी, चाहे वो सिंपल टीबी है जिसको हम सेंसिटिव टीबी बोलते हैं, या एमडीआर टीबी है या एक्सडीआर टीबी है, इन सभी का डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध है शारदा हॉस्पिटल के अंदर में। थैंक यू।
0: अभी आप सुन रहे थे 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले एपिसोड में फिर से आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
1: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
0: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
1: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
0: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
2: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजिली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जिया जले जा चले

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। किसान मित्रों, आजकल अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हमारी खेती में बहुत ज्यादा लागत आ रही है और जल, वायु, भूमि, साथ ही हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित हो रहा है। और इसके साथ ही जो खाद्य पदार्थ हैं जो हमको खेती से मिलते हैं वो भी जहरीले हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती करने की जो सिफारिश है हमारे कृषि वैज्ञानिक आजकल आपसे कर रहे हैं। भारत सरकार भी जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। किसान मित्रों, रासायनिक उर्वरकों के बहुत ज्यादा प्रयोग से हमारे जो खेतों की मिट्टी है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन नष्ट होती चली जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जो जैविक खाद है वो काफी कारगर है। तो किसान मित्रों, जैविक खेती करके आप भी कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है आपको जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीकों से भली भांति परिचित होने की। किसान मित्रों, जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, साथ ही हमारे किसान भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि जब वो लागत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। और किसान मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप जैविक खेती करेंगे और जैविक खेती करके जब कोई भी फसल आप प्राप्त करेंगे, उसको बाजार में ले जाएंगे, तो उन जैविक उत्पादों का बाजार में बहुत ज्यादा मूल्य आपको प्राप्त होता है, क्योंकि आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसको शुद्ध अच्छी चीज मिले ताकि वो स्वस्थ रहे। और किसान भाइयों, आपको बता दें कि आज के आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती करना बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो किसान मित्रों, आप भी जैविक खेती करें ताकि हमारा जो भारत है वो स्वस्थ बने, शक्तिशाली बने। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही जैविक खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान।

0: मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ओ हीरो, मिले बिना जाएगा?
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखिए कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: सुनो शारदा।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और क्रैनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: डेंगू और मलेरिया का दी एंड। चिकनगुनिया का दी एंड। दिमागी बुखार का दी एंड। ये
2: तारा, तुम कर क्या रही हो? तारा
1: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
2: ओह,

0: नहीं, नामुमकिन है।
1: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
0: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
1: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
0: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
1: ये बात है तो हम बच्चे भी मच्छरों से दुश्मन लड़ने के लिए तैयार है।
0: क्या कहा तुमने?
1: Kids want to know, Miss Machar, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
0: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
1: मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: बचाओ टीम तारा, जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: टीम तारा है भैया।
2: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
1: गुड बाय।

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार। बाय बाय।
2: हेलो मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
3: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
3: मुझे बुखार हो गया है।
2: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है। तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
3: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
2: नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
3: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग
1: और हाँ एक खास बात SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है तो फिर कहीं देर ना हो जाए कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश
2: हाय मैं हूं रणविजय आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 सोनो
3: शारदा। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब होटल मॉल स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ आपदा प्रबंधन योजना इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें ध्यान दीजिए अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा
3: ट्वेल्थ पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: चिलूंगी पोर।
1: हवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
2: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तक कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
1: हाँ
2: चलो धूम मचाते हैं।
1: फिक्स।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
5: एफएम। नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 एफएम और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
3: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
2: क्या है राज?
3: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
4: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
7: प्लीज।
6: थैंक यू।
8: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
6: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चों कौन हूँ मैं।
8: अली का शरारती है। वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो
3: तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अभियान।
1: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए niksha.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: आप सब जानते हैं कि हमारे नाम में ही लोगों की आशा छुपी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि होम विजिट के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास होम विजिट में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान मौजूद हो और साथ ही ये होम विजिट फॉर्म भी हो। नमस्ते अम्मा। घर पहुंचने पर सबसे मुस्कुरा कर मिले और वहां के वातावरण को जांच के अनुकूल बनाएं। बच्चे को छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने, घर वालों को भी हाथ धोने का फायदा बताएं। बच्चे की पीलिया की जांच करें और साथ ही आंख, मुंह, नाल और त्वचा की भी जांच करें। बच्चे का तापमान थर्मामीटर से मापें, कहीं बच्चे का तापमान ज्यादा या कम तो नहीं। बच्चे का वजन करें, हर विजिट के दौरान वजन में बढ़ोतरी का हिसाब रखें। माँ को स्तनपान का सही तरीका और फायदे बताएं। 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दें। होम विजिट फॉर्म में लिखे सभी सवालों को माँ और परिवार से पूछें और जानकारी दर्ज करते हुए उचित सलाह दें। बच्चे का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ लगे तो उसे तुरंत 102 या फिर 108 बुलाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। आखिरी में अपनी अगली होम विजिट की तारीख परिवार वालों को बताएं। अपना फोन नंबर दंपत्ति से अवश्य साझा करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने हर होम विजिट को सफल बनाइए, क्योंकि हमारी हर विजिट से फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहाँ पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है ये हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म नहीं, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए, और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुनो शारदा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM. Suno Sharda
6: 90.8 FM. भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा?
1: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।

0: डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक

0: टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।